के नाम की तुम ऊपर छाम जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ख है जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ख है तह नानक हार हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम भगत जना की

सरनी परै। जिस जानक आओ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जा का मटै अभिमान। आपस काओ जो जाने नीचा, सौ गनिये सब ते ऊंचा। जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सृष्ट साजना।

0: सगल कटाकाओ देवहो दान करन करावन हार सुअमी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गात मित जानहो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम भला हर का नाम जपहो जीय सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जेह घट वसै हर नाम
1: सलोक निर्गुण यार एआनिया सो प्रभ सदा समाल
2: एआनिया नन्ने नर बोलन
1: निर्गुण यार एआनिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यारा दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक सैन मुख अपयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै बखस लेहो तौ नानक सीजै जह प्रसाद धर ऊपर सुख बसहै सुत प्रात मीत बनिता संग हसहै जह प्रसाद पीवह सीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जह प्रसाद भोगह सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेतर रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध पे आपे।

कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिस का श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्दब प्रीत पसम संग होए, अंध कूप मह पतित विकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहे कछ करै छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान।

अपनी अमान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै, जिसकी बस्त तिस आगै राखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै।

बेरख की छाया स्यो रंग लावै ओह बिनसै ओह मन पछोतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहयो।

0: मिथ्या रांग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरहै मिथ्या नेतर पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या नेतर पेखत पर त्रय रूपाद
1: पेखत विश्राम ला लो
0: मिथ्या नेतर पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम लए
1: इसे अष्टपदी दा जड़ा चौथा पद है वह दर्शन करो याद रखना कि उदे विच जड़ी पहली पंक्ति आउंदी है चौथे पदे दी आरंभता विच मिथ्या तन तन इत्थे विश्राम आएगा बाकी सारे इस पदे दे विच विश्राम मिथ्या दे उत्ते ही होणगे जड़ा इदो अगे पंजवां पदा प्रारंभ हुंदा है मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है इस पदे दे विच मारे सच्चे पातशाह जी ने पहलां तां समूहिक रूप दे विच सानू बचन सुनाया है मिथ्या राज जोवन तनमान ये सब कुछ मिथ्या है हुण इत्थे महाराज जी ने नाल एक एक चीज का जिक्र किया जिवें पहलां कन्नां दा जिक्र आया है फिर हत्थां दा आया है फिर अखां दा आया है फिर जीव दा फिर पैरां दा फिर मन दा फिर तन दा इस तरह दे नाल अगले इस पद दे विच मिथ्या दे नाल एक एक चीज ला के जिवें मिथ्या श्रवण इत्थे विश्राम फिर मिथ्या हस्त इत्थे विश्राम मिथ्या नेत्र पेखत पेखत दे विश्राम लाउणा तां कि यह स्पष्ट हो जाए भी अखां दे नाल वेखण दी इत्थे गल हो रही है सो यह ध्यान रखना पहले पदे विच ज्यादा जिहड़े विश्राम ने वह मिथ्या ते आए ने पहली पंक्ति दा धन ते आएगा उदू बाद विच जिहड़ी फिर दूसरी जिहड़ा पंजवां पद है इहदे जिहड़े विश्राम ने यह फिर सेम नहीं आउणगे मिथ्या दे वांगू एक एक करके नाल फिर इन्हां दे जिहड़ी महाराज जी ने संबोधित किया है अखां नूं कन्नां नूं रसना नूं सो वह नाल ला के विश्राम इदा अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे ते शुद्ध उच्चारण भी फिर इसी तरह ही होगा। हाँ जी
0: बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध
1: इथे भी बेनती है ये जिहड़ियां दोने पंक्तियां ने पहला बिरथी इथे विश्राम आना है कई बार असि जो फ्लो फ्लो विच पढ़ते हैं तो फिर असि बिरथी साकत की आरजा असि इदा पढ़ते हैं पर बिरथी इथे रुकना है अगे फिर जिहड़ा बिरथा बिरथा नाम नहीं कहना फिर तो नाम ही बिरथा हो गया बिरथा नाम बिना तन अंध सो इस तरह दे नाल पहला बिरथी ते विश्राम फिर बिरथा ते विश्राम ये भी खास करके आप जी ने ख्याल रखना है। हाँ जी
0: बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो किरपन के निरारथ दाम धन धन ते जन जह घट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत

बिनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप है मानै आप है आप आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए जो सो सेवक

बालक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।

सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी काओ सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और धार जो अंतर नाम सर्व मैं पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस काओ मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत किरपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परमगत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खुवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मह सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै।

अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर का उतारै सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार भम का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जा

रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलियो प्रभ अविनास, कई कोट मग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहु पात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहार है एको नेतरे। कई कोट नाम रस पीव है, अमर भय सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है। अपने जन को सास सास समाव।

0: तिस बलिहारणै जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करनै जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार आधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै प्रभ भावै बिन सास ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै प्रभ भावै ता पतित उधारै आप करै आपन बीचारै दुहां सिरिया का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानक ते कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसकै हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दह दिस धावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगती दे नानक
1: भगत।

कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बखसीस, ताका लिखा न गनै जगदीस। जियो पिंड सब तिस की रास।

0: कबहु नृत्य करै बहुपात, कबहु सोए रह दिन रात, कबहु महाक्रोध बिकराल, कबहु सर्ब की होत रवाल, कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु कबहु पेखारी नीच का साजा, कबहु अप कीरत मह आवै, कबहु भला भला कहावै, ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन धारी लावै ध्यान, कबहु तट तीरथ इसनान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमै परमिया।
1: ਇਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਪਾਠ ਦੇ। ਕਬਹੋ ਪੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਬੱਬਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਹੂ ਤੇ ਕਬਹੂ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬਹੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਲੰਕੜ ਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।
0: अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै,
2: नाना थोड़ा जो कस के,
0: नाना रूप,
2: नाना
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचा, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहु साध संगत एहो पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान परगास, उस अस्थान का नहीं बिनास, मन तन नाम रत्ते इक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मह जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी।

गर्भावै, त्रिण समान कछ संग न जावै, बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पाल पीतर ताका होए बिनास, साबते आप जाने बलवंत, साबते आप जाने बलवंत, खिन मह होए जाए पसमंत, किसे न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन दरग है सो जन नानक दरग है परवान, कोट कर्म करै हौ तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसह भलाई निकट न आवै, सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इस कौ सुख नाही कोए, जब इह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता।

का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी कौ अवर न राखन हार, नानक संत भावै ता ले उबार, संत का दुखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहूण मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जोत सभावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरै ना जीव आइय, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निरासा, संत कै दुख ना तृष्टै कोय, जैसा भावै तैसा कोई होय, पया किरत ना मिटै कोय, नानक जानै सच्चा सोय, सब घट तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहौ दिन रात, तिसह त्यावहौ

बिनसै सब संग चरण चलाओ मार्ग गोबिंद मिटहै पाप जपजै हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा।

ऐसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उनहू बन आए आपस काओ आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जा कै सिमरन उदरिय नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गाढ़नहार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूप बंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सोह धनवंता होए क्या को गर्भ जा सा

तेरा संग लपट रहयो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया।

0: पिता का जन्म के जाने पूत।
1: पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, समत ज्ञान ध्यान जिन

0: च तिसके अस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग।
1: नाना पहला वंग दस्या सी भाई जी ने, नाना नहीं कहना, नाना।

0: रहो पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई।
1: बनाई नन्ने नाल है, नाना बोलिया गया, दुबारा पढ़ दियो।
0: नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मा।

सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत

0: एक है आप नहीं कछ परम सहस सियाणप लया ना जाइय नानक ऐसा गुर बडभागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए।
1: जिवें पाठ ठीक ही कीता गुरमुख प्यारे ने पर इस पाठ दा ध्यान रखना क्योंकि ये पाठ बहुत ही वारी नहीं आउंदा। अखियाओ ऐड़ा खखे नूं सिहारी फिर ऐड़ा ते ऊड़े दा मूंह खुला अखियाओ इस तरीके दे नाल पाठ करना। हांजी
0: जिहेबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बिबेक का
1: बिबेक
0: सत पुरख पूरन बिबेक काहू बोल ना पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई।

0: माहे ठाड वरताई अनद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरन उपदेसे भौ चूका निर्भौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी
1: श्लोक साथ ना चाले बिन भजन बिख्या सकली छार हर हर नाम कमावना नानक एह धन सार अष्टपदी

एक आस राखहु मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस धन का चार कुंट उठताव है सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख का नित बच है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सोभा का करह भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाय रोग मिटै हर अवखद लाय सर्ब निधान मह हर नाम निधान जप नानक दर्ग है प्रवान मन प्रबोध हर कै नाय दह दिस धावत आवै ठाय ताको बिघन न लागै कोय जा कर हृदय बसै हर सोय कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ भौ बिनसै पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाय बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत बीचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव यो रतन जन्म का होए उधार हार हार सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहौ मन लाय मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इन ते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बिसार नानक पछुताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करहौ मन मीत निर्मल होय तुमारो चीत चरण कमल राखहौ मन माहे जन्म जन्म के केल बिख जाहे आप जपहौ अवरा नाम जपावहौ सुनत कहत रहत गत पावहौ सार भूत सत हर को नाव सहज सुभाए नानक गुण गाव गुण गावत तेरी उतरस मैल गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाय होमै बिख फैल हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना साध संग पाव है सच धना हर पूंजी संच करहो व्यवहार इहा सुख दर्ग है जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनेक विस्थार एक ते भय एक आराध प्राचत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन

नानक नाम जपहु गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतरे मन तन अंतर इही सुआव नेत्र हो पेख दर्स सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताक उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा किरपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब घटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हार हार नीत भली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गौर मंत साध संग प्रभ देह निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एह काश ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध केस संग कमात जब इसका वर्ण चेहन न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब अपने आप पार बहम तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहा।

0: छल छिदर लगत कहो कीस जह जोत स्वरूपी जोत संग समावै तह किसह भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई।
1: ए पिछली पौड़ी विच अखीरलियां दो पंक्तियां आईयां सन आपन आप ही अचरज अगे आपां अचरज पाठ करदे आए हां पर इत्थे अचरजा पाठ करना चाल दे मुताबक भी ठीक है ते बाकी ए नोट करना बाकी थावां ते अचरज पाठ ही आया है। अपन आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा ए अचरजा पाठ शुद्ध है।
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्ब कला जह अपनी शोभा आपन संग बनाई। तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्ब कला आप है प्रवीन तह वेद कतेब कहा को चीन जब अपने आप और तारै तौ सगन अपसगन कहा विचार जह आपन ऊच जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप जह अच्छल अशेद अभेद समाया ऊहा किसह व्यापत माया आपस कहो आप है आदेश तेहो गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन

समय करी एकस घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत।

0: चार कुंट तह दिसहे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं को ठाओ गुर।
1: दह दिसे पाठ यद दह दिसहे नहीं, इदवारी पंक्ति पढ़ दे।
0: चार कुंट दह दिसहे
2: दिसे दुलामा नाल,
0: चार कुंट दह दिसे समाहे,
2: दिसे
0: चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस ते भिन्न
2: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸੇ
1: ਲਾਂ
2: ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।

0: सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक जिस जन नानक तिस जन आप बुझाए सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया
1: खेल नू खेल भारा थोड़ा लल्ला
0: आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कै मद अलिप तो रह जो किछ कहना सो आप

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरहो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो तरंग।

दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का इह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन।

सोए, नानक जिसह परापत होए, खेम शांत रिद नव निद, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन कै मुख भने, गुर नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मह ता की गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मंतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसे

तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सां दे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग सूही छंत महला पहला घर पहला

नानक बाल तन राडे पा बिन पेर तन कुमलाणी। बाबा मैं वार देहे मैं हर वार पावे तिस की, बलराम जियो अराव रहया जुग चार। त्रिपवन बाणी जिसकी, बलराम जियो त्रिपवन कंत रवै सोहागण।

नार सो सर्ब सुहागण रांड ना मैला वेसे, नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे।

काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे कुर पाया मन हरली मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे।

अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात।

परि एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सचे पाति साह मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पाति साह सिर साहां दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो। सतनाम वाहे गुरु साहिब जी तनासरी

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावहो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावहो गोपाल राय रहाओ।

एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप।

सोचै सोच न होवै, जे सोचि लख वार, चुपै चुप न होवै, जे लाए रहा लिव तार, भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियान पा लख होहे, ता एक न चलै नाल, केव सचियारा होइऐ, केव कूड़ै तुटै पाल, हुकम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लेख दुख सुख पाईया है, इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाईया है, हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै, ता हउमै कहै ना कोए, गावै को तान, होवै किसै तान।

कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला साच

नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख था परखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर केता भार धरती होर परै होर होर तिस ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन पूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख ताप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सोखेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिया मत।

जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबा उलख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश।

चुप्पै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगते छुट्टै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए।

कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र भेद सबै बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया सबद गावन

नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग मह आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नित रहो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो हो कोई, हर बिन अवर ना देखो हो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेतर अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनना नो पठाए। साचै सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुने मन तन हरिया, हुआ रसना रस समानी।

अंत ना जाई पाया। कहै नानक हर प्यारै जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचै घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचै जिथै सदा सच त्याव हे। सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव हे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे। कहै नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे।

गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

दास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फत है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नाउ निध आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चाली मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन दिठ कीता तिन्हां प्यारिया सचियारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतहै बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बख्शो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांज बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते परवान करनी सब नू अपने दरों घरों नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदुरुस्तियां बख्शिश करदियां होया अपने दर घर दे नाल आप जी ने जोड़ी रखना
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

तस्य दुख संसार है खूबै गुर नाव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

सतसंग जी अंतर्गत होके नाम नु सुनना करना जियो। नाभ चक्कर ते सुन सकते हो, हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उथे सुन सकते हो, कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आंदी है उथे सुन सकते हो। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं नाम सुनन दी दिक्कत आउंदी आ जी, जदों सवास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, जदों सवास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना, इस तरह सास ग्रास ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀਓ।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिख सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा ने चलथाओ

पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बद बखत हम चो बखील गाफिल

जति सति नहीं पड़या। मूर्ख मुग्दा जन्म भया, प्राणवत नानक तिनकी सरणा, जिन

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै

मंदिर में अछत ही दूसरो ना जाने, जो पै रखवैया पुन प्रगट पर गास करे।

तुम्हरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुज राखो राखनहार दयाला नान करके गोदे आप संगतन गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा रहे सुन। भाई दविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहब वाले जत्था बहुत बहुत धन्यवाद। हुण भाई करमजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड दरबार साहब तिना पासों कीर्तन सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

पयण जो तिस भावै समरथ सोथिय हीलड़ा एहो संसारो जल थल मही अल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अपारो ताका अंत न पाया आया तिनका सफल पया है एक मन जिनी ते आया ढाहे ढाहे उसारे आपे हुक्म सवारण हारो ज्योतिष भावै समरथ सोथिय हीलड़ा एहो संसारो नानक रुना बाबा जानी जे रोवा लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवण सगल बिकारो रोवण सगल बिकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा किश सूझै नाही एहो तन एवै खोवै एथे आया सब को जासी।

जो होए मरण परमाणु, सूरे से ही आ गए आखी है, दर गह पावे साची माणो, दर गह मान पावे पत स्यो जावे, आगे दुख न लागे कर एक त्यावे, ता फल पावे जित सेवे भौ भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरह परवाणो ना।

हारो बैयर नाम सुहागणी सच सवारण हारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वड़हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानोवा सचड़ा दूर ना पाली है घट घट शब्द पछाणोवा सच शब्द पछाणो दूर ना जानो।

हारो वह मैल ना तो वह सुपनांतर संसारो ज्यो बाजी घर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुरपुरे राखे नानक सहज सुभाए वड़हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसारो वा सच्चा कर सचड़े सेवी है सच खरा सचियारो वा कूड़ लब जा थाए ना पासी अगे लह ना ठाओ अंतर आओ ना बैसो कही है ज्यों सुन्ये कर काओ जमण मरण वड़ा वे छोड़ा बिनसे जग सबाए लब तंदे माया जगत पुलाया काल खड़ा रुआए बाबा आव हो भाई हो गल मिल है मिल मिल देह आसीसा है बाबा सचड़ा मेल ना चुकई प्रीतम किया देह आसीसा है आसीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मेलो एक भूले ना वहो थे हो था वहो गुरु सब दी सच खेलो जम मार्ग नहीं जाना सब दुश्माना जुग जुग सच है वेसे साजन सैन मिलो संजोगी गुरमिल खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग में दुख सुख लेख लिखाया लिखियड़ा साहा ना टले जिहड़ा पुरब कमाया बै सच है लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामण आरी कामण पाए बोरंगी गल तागा होची मत

तन तन संपै सुख दियो अरजे नीके ताम को नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहि न कोए को नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए जेह सिमरत।

मित पै जै मित बिगसै जिस मित की पैज भावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पै नावे। सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया।

हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोरी पुत सन

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराय आग्या भई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिलबो चहै, खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रह ना खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है

क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या बे

तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हां तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, हर सच्चे हर त्यावै तुद जी, से जान जुग में सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन हार निरभौ त्याया जी, तिन का भौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी।

कर किरिया खाट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार।